0: उस समय बहुत लोगों को यह जोखिम भरा निर्णय लगा, लेकिन पवन चंदना को अपने सपने पर पूरा भरोसा था। हाल में ही उनकी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने विक्रम एक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया। यह भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट बना जिसने सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश किया। यह उपलब्धि केवल स्काईरूट की नहीं बल्कि भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक नया अध्याय है। पवन चंदना की कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता केवल परीक्षा के अंकों से तय नहीं होती, आत्मविश्वास, मेहनत और साहस यही आपके सपनों को असली उड़ान देते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर कभी आपको लगे कि एक असफलता आपके सपनों का अंत है तो पवन चंदना की कहानी से प्रेरणा लीजिए। गणित में 51 अंक पाने वाला वही छात्र आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक नया सितारा बन चुका है।
1: क्या बात है।

0: तो श्रोताओं, आशा करते हैं यह प्रेरक कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। और जैसे ये कहानी जो हम पिछले कार्यक्रम में करना चाहते थे और नहीं कर पाए, और ऐसा ही एक और पिछले सप्ताह भी हुआ। एक्चुअली हमारा कार्यक्रम होना था लेकिन कुछ कंफ्यूजन हो गया था,
1: कुछ लोगों ने जबरदस्ती जो
2: आप ही का प्रोग्राम था
0: तो यतीन जी ने किया, तो उस कार्यक्रम की संजीव जी ने तैयारी की थी। और चूंकि पिछले हफ्ते का कार्यक्रम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस विशेष था, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी रिपोर्ट संजीव जी ने तैयार की थी। तो हम चाहते हैं कि वह रिपोर्ट जो है श्रोताओं के साथ साझा की जाए, जिसमें विशेषकर जो यंग जो भारत के जो बलिदानी हैं, भारतीय सेना से जिन्होंने बिल्कुल कारगिल युद्ध के दौरान इतने छोटे, आज भी संजीव जी उनकी कहानी पढ़ते हैं कि उम्र 23 साल 24 साल और क्या क्या किया उन्होंने, कहाँ जाके
1: किस लेवल
0: कितने घायल हो गए, और उसके बाद भी उन्होंने वो जज्बा। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यहाँ पे हम अपने 22 साल के बच्चे को जो है वो इंटरसिटी कहीं जाना होता है तो हम कहते हैं अरे हम चलते हैं तुम्हारे साथ, तुम क्या जाओगे, और वहाँ उन्होंने कारगिल का पूरा फतेह कर लिया जाके। तो ये दिखाता है कि हमारी सेना की जो प्रशिक्षण है वो किस उत्कृष्ट दर्जे का है। बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, यही जो कारगिल में जो हमारे शहीद हुए थे उनको एक तरीके की श्रद्धांजलि है, और इसको ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सोचिएगा उसके बारे में। और जैसे आप कह रहे हैं कि इवन मेरे ख्याल से भगत सिंह को भी जब फांसी हुई है 24 साल या कुछ के थे वो,
0: 23 साल।
1: तो मतलब ये लोग कुछ स्पेशल पैदा होते हैं या क्या है।
0: और दूसरी तरफ मतलब राजनीतिक वो है लेकिन मैं उसको चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन आजकल जैन जी की काफी बात हो रही है। और किस किस तरीके के निम्न स्तर के, मैंने भी एक दो बार वो वीडियो देखे कि मतलब इन दोनों की कोई तुलना नहीं है। एक जो हमारे जो शहीद जिन्होंने देश के लिए ये जज्बा दिखाया है, और दूसरी तरफ जो
2: हर एक को शामिल न करें जैन जी में, मैं आपको एक ये कुछ जो होते हैं ना वो हैं वो हमेशा मिलेंगे, उनको आप जनजी का एक
1: नहीं बोलना।
0: एक्चुअली सोशल मीडिया उनको प्रमोट कर देता है, अदरवाइज ऐसे तो लोग हमेशा रहे हैं लेकिन हम लोगों के
1: मुझे तो कभी कभी लगता है कि दे वर पेड टू डू दैट,
0: हो सकता है।
2: हाँ, वो तो
0: चलिए यह निर्णय हम श्रोताओं के विवेक पर छोड़ते हैं और रिपोर्ट चालू करते हैं।

नमस्कार। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की इस पावन प्रभात पर आपके साथ हूं मैं संजीव शर्मा। 15 अगस्त जब हमारा तिरंगा नीले आकाश में पूरे गौरव के साथ लहराता है, तब हवाओं में केवल आजादी का उल्लास नहीं होता, बल्कि उन वीरों की सांसों की महक भी होती है जिन्होंने इस देश की माटी को अपनी जान से बढ़कर माना। 15 अगस्त का यह दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि उन अमर शहीदों को नमन करने का दिन है जिनकी बदौलत हम आज इस आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं।

एक सैनिक केवल जैतून की वर्दी नहीं पहनता, वह अपने साथ अपने परिवार का विश्वास, अपनी मां की दुआएं और अपनी मातृभूमि का कर्ज लेकर चलता है। जब सरहद पुकारती है तो सैनिक अपनी निजी खुशियों, अपने सपनों और अपने अपनों को पीछे छोड़कर केवल फर्ज की राह पर निकल पड़ता है।

आइए आपको आज कुछ कारगिल के अमर युवा नायक और उनकी शहादत की कहानी सुनाते हैं। वर्ष 1999, कारगिल की बीहड़ और बर्फीली चोटियां, -10 से 20 डिग्री तापमान, जहरीली हवाएं और खड़ी चट्टानों पर घात लगाए बैठा दुश्मन। जब दुश्मन ने हमारी जमीन पर कब्जा करने की नापाक कोशिश की, तब भारत माँ के 20 से 25 साल के युवा अधिकारियों ने अपनी जवानी और सपनों की बलि देकर ऐसा पराक्रम दिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। सोचिए उस 24 साल के नौजवान के बारे में, हिमाचल के पालमपुर के कैप्टन विक्रम बत्रा, मर्चेंट नेवी की लाखों की नौकरी और एक आरामदायक जीवन को छोड़कर वे सेना में आए। जब उन्होंने .5140 पर तिरंगा फहराया तो पूरा देश उनका कोड वर्ड सुनकर झूम उठा, यह दिल मांगे मोर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 7 जुलाई 1999 को .4875 पर जब उनके साथी सूबेदार रघुनाथ सिंह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, तो विक्रम ने उन्हें पीछे खींचते हुए कहा, तू हट जा रघु, तेरे बीवी बच्चे हैं, और खुद आगे बढ़ गए। दुश्मनों की गोलियों से सीना छलनी होने के बाद भी उन्होंने दुश्मन के बंकर तबाह किए। शहादत से पहले उनका वो मुस्कुराता हुआ वादा आज भी देश की हवाओं में गूंजता है, या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। आइए अब कहानी सुनाते हैं आपको एक और वीर सिपाही की। याद कीजिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर के कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र। जब वे महज 24 साल के थे तो SSB इंटरव्यू में अफसरों ने पूछा, सेना में क्यों आना चाहते हो? मनोज ने बिना हिचकिचाए कहा था, मुझे परमवीर चक्र जीतना है। 19,700 फीट ऊंचे खालूबार टॉप पर जब वे अपनी प्लाटून के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो दुश्मन की मशीन गन से गोलियों की बौछार हो रही थी। कंधों और पैरों में गोलियां लगने के बावजूद मनोज रुके नहीं, रेंगते हुए आगे बढ़े और अकेले ही दुश्मन के 4 बंकरों में ग्रेनेड फेंक कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। माथे पर आखिरी गोली लगने से पहले उन्होंने नेपाली में तरसते हुए अपने जवानों को आदेश दिया, ना छोड़ने, उन्हें छोड़ना मत। मनोज अक्सर अपनी डायरी में लिखा करते थे, अगर मेरी रगों में खुद को साबित करने से पहले मौत भी आ जाए तो कसम खाकर कहता हूं, मैं मौत को भी मार डालूंगा। आइए नमन करते हैं दिल्ली के कैप्टन अनुज नैयर, महावीर चक्र। उम्र महज 23 साल, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, सगाई की अंगूठी हाथों में थी, लेकिन जब द्रास सेक्टर के पिंपल कॉम्प्लेक्स को छुड़ाने का बुलावा आया तो अनुज ने कहा, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, पहले देश बचाना है। बिना किसी आर्टिलरी सपोर्ट के अनुज ने अकेले 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा और 3 बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। 4th बंकर पर रॉकेट ग्रेनेड लगने से पहले उनके शब्द थे, पाकिस्तान में ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो आज मेरा कुछ बिगाड़ सके। और जरा याद कीजिए नोएडा के कैप्टन विजयन थापर, वीर चक्र को, जो महज 22 साल का वो नौजवान जो स्वभाव से इतना कोमल था कि कारगिल युद्ध के दौरान द्रास की एक छोटी अनाथ बच्ची रुखसाना का दुख देखकर उसने अपनी जेब खर्च से उसकी पढ़ाई का जिम्मा ले लिया था। 28 जून 1999 को नौल की बेहद दुर्गम चोटी पर दुश्मन पर विजय हासिल करते समय सिर में गोली लगने से वे वीर गति को प्राप्त हुए। शहादत से ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ और पिता कर्नल VN थापर को एक खत में लिखा था, डियरेस्ट पापा मम्मा,
जब तक यह पत्र आप तक पहुंचेगा, मैं ऊपर आसमान से आप सबको देख रहा हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मैं इंसान के रूप में दोबारा जन्म लूं, तो फिर से भारतीय सेना में ही जाऊंगा। और हाँ, रुखसाना की पढ़ाई के लिए हर महीने 50 रुपये जरूर भेजते रहना। और यह शब्द शहादत का यह सिलसिला कारगिल पर ही खत्म नहीं था। 2020 की गलवान घाटी की उस कड़कड़ाती ठंड में, -डिग्री तापमान में दुश्मन के छल का सामना करते हुए कर्नल बी संतोष बाबू महावीर चक्र का वो सर्वोच्च बलिदान हो, या आतंकवादियों के नापाक इरादों के आगे सीना तान कर खड़े होने वाले कैप्टन तुषार महाजन और मेजर अनुज राजपूत की शहादत, कारगिल से लेकर आज तक हमारे युवा अफसरों ने साबित किया है कि भारत माँ की रक्षा के लिए हमारे वीरों का खून कभी कम नहीं पड़ेगा।

जब एक वीर जवान के लिए सीने पर गोली खाता है तो सिर्फ एक सैनिक नहीं गिरता, एक माँ का सहारा चला जाता है, एक पत्नी का सुहाग छूट जाता है और एक मासूम बच्चे के सिर से पिता का साया उठ जाता है। लेकिन धन्य है इस देश की माटी और वे माताएं जो अपने एक बेटे को खोने के बाद भी अपने दूसरे बेटे को हंसते हंसते सरहद पर भेज देती हैं। वह शहीद जवान पीछे छोड़ जाता है हम सबके लिए एक अमर संदेश कि जिस वतन की हिफाजत उन्होंने अपनी जवानी और अपने खून से की है, उच्च आजादी, उसकी अखंडता और उससे सम्मान को हम कभी कम ना होने देंगे।

आज कारगिल से लेकर सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक और गलवान से लेकर समुद्र की अथाह गहराइयों तक हमारे मिट्टी के बेटे रात दिन हर मौसम में हमारी सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं, ताकि हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। आइए 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर हम अपने सैनिकों के अदम्य साहस को नमन करें, उनके परिवारों के असीम धैर्य को सलाम करें और उन माताओं के चरणों में शीश झुकाएं जिन्होंने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया। अपने देश पर गर्व कीजिए, अपने शहीदों की शहादत को अपनी यादों में जिंदा रखिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।

0: तो जैसे कि हमने आपको वादा करा था, तो टैक्स और SMS है, अब सुपर, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे एक श्रोता हैं, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि प्राइवेसी की वजह से। तो उन्होंने लिखा है कि वुड यू एंडोर्स माई रिटायरमेंट स्ट्रेटजी एज फॉलोज। आई एम 65, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम माई फुल टाइम जॉब। आई विल ट्रांसफर माई सुपर टू रिटायरमेंट फेज। आई हैव ए बिजनेस विद एनफ फ्रैंकिंग क्रेडिट टू लुक आफ्टर माई रिटायरमेंट थ्रू फ्रैंक डिविडेंड फॉर 10 years। आई विल लेट माई रिटायरमेंट फंड कंपाउंड फॉर 10 years। इज दिस ए गुड स्ट्रेटजी? तो एक इसका बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जब आप रिटायरमेंट फेज में जाते हो तो आपको एक पेंशन विड्रॉ करनी ही पड़ती है, कैश, इट इज़ मस्ट। अगर आप वो विड्रॉ नहीं करोगे तो आप रिटायरमेंट फेज में नहीं जा सकते हो। लेकिन आपका जो फ्रैंकिंग क्रेडिट है, मेरा एक सुझाव होगा, लुकिंग एट द गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी किस तरीके से क्या चल रही है, वो फ्रैंकिंग क्रेडिट को कभी भी डिसबैलेंस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करेंगे। तो मेरा एक सुझाव है, केवल ये जेनरिक सुझाव है, अभी मेरे आपकी सारी सिचुएशन नहीं मालूम है, कि आप रिटायरमेंट फेज में मिनिमम पेंशन को रखिए, जिससे कि आपको उसमें टैक्स ना पे करना पड़े। तो सुपर फंड आपकी इनकम पे 15% टैक्स पे करता है, लेकिन आप रिटायरमेंट फेज में चले जाते हो तो आपको 0% टैक्स में चले जाते हो, यू पे नथिंग टैक्स, ठीक है? तो वो आप 15% बचा रहे हो। एक मेरा सजेशन ये हो गया। फ्रैंकिंग क्रेडिट का आप क्या कर सकते हो कि आप उस लेवल पे, तो जैसे कि मान लो 40-50 हज़ार डॉलर, आप डिपेंड करता है कि आपकी और दूसरी इनकम क्या है, वहाँ तक की फ्रैंकिंग क्रेडिट लीजिए, जिससे कि आप उसका भी इस्तेमाल करते रहो। तो राधा देन कि आप अपनी नीड के हिसाब से करो, आपको टैक्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आप विद इन 30%, आई बिलीव का आपका 30% का फ्रैंकिंग क्रेडिट होगा, तो वहाँ तक आप ले लो, एंड देन आप दोनों के मजे ले सकते हो। तो दिस इज माई सजेशन टू यू। और वैसे एक चीज़ और होती है कि मैं जैसे उसमें मैंने ऐड भी करा था कि मैं थोड़ा SMS ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रदीप जी, आजकल SMS ऐप का ऐसे चला हुआ, डोंट नो लोगों को क्या हो गया, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि आप खाम में इसके चक्कर में ना फंस जाओ। काफ़ी जो मार्केट में जो स्पूकनेस बोलते हैं कि वो बोलते हैं SMS ऐप बना लो, ये कर लो, वो कर लो, आप प्लीज़ उसको ऐसे नहीं लीजिएगा, ये अपने आप में सीरियस है, आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है, आपकी हार्ड अर्न कमाई। एक्चुअली 2-3 दिन पहले ही जो हमारा असिस्टेंट ट्रेजरर है उसने इसके ऊपर बोला है कि कई लोग बोलेंगे कि SMS ऐप खोल लो, पैसा निकाल लो, ये सब, ये यू कैन बी इन बिग ट्रबल, यू कैन बी डिसक्वालीफाइड पर्सन एज वेल फॉर दैट। तो मैं थोड़ा SMS ऐप के बारे में प्रदीप जी बताता हूँ कि SMS ऐप क्या होता है। सेल्फ मैनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल्फ मैनेज और सुपर फंड हो गया SMS ऐप। इसमें मैक्सिमम 6 मेंबर हो सकते हैं, और जो जितने मेंबर हैं उतने ही, अगर आपकी जो इसकी ट्रस्टी है अगर उसमें डायरेक्टर होंगे तो वो भी 6 होंगे, तो अगर 4 मेंबर हैं तो 4 डायरेक्टर होंगे, ठीक है? और इसमें नॉर्मली लोग अपने फैमिली वाले को रखते हैं, या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, वो रखते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है सुपर और SMS ऐप और नॉर्मल सुपर में, इसमें आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत प्लान कर सकते हो, कब पेंशन को ख़त्म करना, शुरू करना, ये चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। अगर आपका इंडस्ट्री सुपर फंड होता है तो उसमें ये चीज़ें नहीं मिलती, ये SMS ऐप के बेनिफिट हैं। लेकिन SMS ऐप के जो नेगेटिव हैं वो ये हैं कि अगर आपने समझो गलती से पैसा को मिसयूज कर, मान लो समझो आपका एक ही बैंक अकाउंट है CBA में, सॉरी नॉट एक ही बैंक अकाउंट, एक ही बैंक के साथ में आपका अकाउंट है, और गलती से आपने जैसे उधर पैसा मिक्स कर दिया, बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। दूसरा है कि आप इन्वेस्टमेंट, जिसको एक हम इनहाउस एसेट करके बोलते हैं, वो आपको वॉच करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी अपनी कंपनी समझो, वो आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने सुपर से, तो इट हैज़ टू बी बिलो 5% ऑफ योर टोटल सुपर में जो कितना पैसा उसका होता है। अब कितना भी कोई बोले, आपको मैं इसमें सलाह ये दूंगा कि आप इसको ना ही करो, आप अपने जहाँ पे रिलेटेड पार्टी का कोई चक्कर है वहाँ पे आप ना करो, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है। क्योंकि जो 5% होता है वो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से होता है, आज के डेट पे हो सकता है आपने 4% करा हो, मान लो कल को मार्केट प्राइस गिर जाता है, वो आप 6% हो गया, बिग प्रॉब्लम, उसमें पूरी पूरी एसेट को सेल करना पड़ता है। एक और है कि अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है तो आप उसमें खुद नहीं रह सकते हो, ना आपने किसी बच्चे को या रिलेटिव को रख सकते हो, तो ये बहुत बड़ी, अगर आपने ये गलती कर दी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन काफ़ी इनोसेंट होते हैं लोग, उसको कर लेते हैं,
1: रूल्स स्ट्रिक्ट हैं इसके काफ़ी
0: जी। लेकिन उसका एक बेनिफिट ऐसे भी है कि जैसे आपका समझो शॉप है, आप रिटेल शॉप करते हो, आप शॉप खरीद सकते हो सुपर फंड में, जो अपने आप को आप रेंट कर सकते हो।
1: ओके,
0: तो डिफरेंट जो प्रॉपर्टी, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो नो गो एरिया हो जाती है इस केस में, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में सब अलाउ होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा प्रदीप जी, संजीव जी आपके लिए भी है, कि जैसे कि समझो आपके पास में $1,000,000 है, वो संजीव शर्मा के नाम में है, अभी आपके पास में पैसा पड़ा हुआ
2: जी,
0: और समझो 10% का रिटर्न आ रहा, तो 100,000 आपको रिटर्न आया, तो आपको, आप चाहे भले 90 साल के भी हो जाओ ना, आपको प्रॉपर टैक्स भरना पड़ेगा।
2: ओके,
0: लेकिन अगर आप संजीव शर्मा सुपर फंड में हैं और तो आपने नॉन कंसेशनल कंट्रीब्यूशन के तरीके से उसमें डाल दिया, तो उस $100,000 पे इफ यू रियली प्लान बेटर जीरो, मतलब जीरो टैक्स। तो ये बहुत बड़ी, आप अगर प्रॉपर अपने अकाउंटेंट से आप बात करिए, अगर आप सुपर का ढंग से इस्तेमाल कर लो तो लीगली आप ना बहुत बेनिफिट, बहुत अच्छे उसमें सिचुएशन हो सकते हो। और एक और उसको कभी कभी हमारे अकाउंटेंट बोलते हैं सुपर फंड को लीगल टैक्स हेवन विद इन ऑस्ट्रेलिया।
1: जी बिल्कुल सही। एक्चुअली जो आपके जो श्रोता हैं जिन्होंने जो प्रश्न पूछा था, उनमें मैं यही कह रहा कि जो सुपर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो 4% से 10% जब आप 65 पे रिटायर हो जाते हैं तो मिनिमम 4% आपको विड्रॉ करना होता है अपने सुपर फंड से, और मैक्सिमम 10 कर सकते हैं हर साल, वो जितना भी पैसा हो वो टैक्स फ्री है।
2: ओके,
1: तो ये मेरे ख्याल से जो लोग क्लोज टू रिटायरमेंट हैं उनको इसी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि टैक्स आप जो है वो बिल्कुल टैक्स नहीं देंगे आप। तो अगर किसी का, सही बात, हस्बैंड वाइफ का, अगर कल्पना करिए 1-1 मिलियन का सुपर दोनों का है
2: जी।
1: और दोनों अगर 5% भी ड्रॉ करें तो 50-60 हज़ार दोनों इंडिविजुअली कर रहे हैं, एंड देट इज़ ऑल टैक्स फ्री इनकम। उनकी जो पर्सनल सेविंग्स होंगी उन पे जरूर टैक्स लगेगा, बट दिस ऑल मनी इज टैक्स फ्री। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। तो चलिए
0: श्रोता, एक्चुअली क्या होता है ना, जो इंडिविजुअल के केस में आपको $20,000 तक जीरो टैक्स होता है, लगभग मैं 20,000 एक राउंडेड फिगर बोल रहा हूँ। तो जो मैंने अपने श्रोता की जवाब दिया था, तो अगर इस तरीके से आप प्लान करते हो ना, तो फ्रैंकिंग क्रेडिट का क्या होता है, आपको रिफंड आ जाता है। जैसे आप अगर $20,000 तक का करते हो तो आपको जो भी फ्रैंकिंग क्रेडिट आपका 30% आपने आपकी कंपनी ने पे करा है वो रिफंड, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से।
2: वेरी नाइस गुप्ता जी, दो क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में। एक तो अगर मान लीजिए कोई एक सुपर फंड बनाता है तो वो कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या हर आदमी का अपना ही
0: नहीं
2: होता है?
0: एक से लेके 6 तक होता है।
2: अच्छा,
0: 1 भी हो सकता है
2: और वो कोई भी 6 लोग हो सकते हैं।
0: हाँ, कोई भी हो सकता
2: है, मतलब 6 दोस्त मिलके भी एक सुपर फंड बना सकते हैं।
0: हाँ,
2: जरूरी नहीं है कि आप रिलेटेड हो,
1: तो एक बड़ा पूल हो जाता है और एक बड़ा प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन जैसा,
2: अच्छा, फिर जैसे 6 लोग में मान लीजिए एक ने 20,000 डाले, दूसरे ने 2 लाख डाले, तो वो उसी के नाम एलोकेटेड रहेंगे?
0: हाँ, हाँ, हाँ। 2 लाख वाले को 2 लाख का बेनिफिट, 20,000 वाले को 20,000
1: प्रोराटा करके मिलेगा बेसिकली।
2: अच्छा,
0: हमेशा।
1: तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, ग्रुप में अच्छे से चल सकती है
2: जी।
1: और लेकिन जैसा वही यतीन जी ने बताया और मैं भी उस चीज से सहमत हूँ कि ये जो सुपर का पैसा है ना
2: जी,
1: इसको टच नहीं करना चाहिए। अगर शौक है आपको कि हमको बिजनेस करना है, ये सब करना है, अपनी सेविंग से करिए, अपना खेलिए, बनाइए, बिगाड़िए, जो भी है, कम से कम एक आपका जो सुपर एक लिमिटेड अमाउंट है वो आपके 65 साल के बाद सुरक्षित।
2: और दूसरा ये नॉन कंट्रीब्यूटरी जो नहीं,
0: नॉन कंसेशनल,
2: हाँ, नॉन कंसेशनल कंट्री, इसकी भी कोई लिमिट?
0: हाँ, तो एक इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, हमेशा आपको याद रहेगा। तो जैसे कंसेशनल की लिमिट है 32,500,
2: अच्छा,
0: तो उसका मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो आप।
2: ओके,
0: वो होती है नॉन कंसेशनल
2: हर साल।
0: हाँ, हर साल। लेकिन नॉन कंसेशनल के केस में क्या होता है कि आप 3 साल का एक साथ में डाल सकते हो।
2: ओके ओके,
0: ठीक है। तो 1,30,000 हो गया है 1 साल का
2: जी,
0: तो 3 साल का हो गया 3,90,000।
2: वाह,
0: और हस्बैंड वाइफ का मिला के 7,80,000 तो आप डाल सकते हो.
2: वेरी नाइस.
0: अगर आप प्रॉपर प्लान करो तो ऑलमोस्ट 4 साल का.
1: एक मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि सुपर आपके पास है और आपकी पर्सनल सेविंग भी है, तो अगर आप रिटायरमेंट के पास जा रहे हैं तो वो पर्सनल सेविंग को अगर आप स्टॉक में रखेंगे या बैंक में अभी टर्म डिपॉजिट तो करेंगे तो उसमें आप टैक्स पे करेंगे. और वही मैं आपने जो यतीन जी ने जो बताया अगर उसको मूव कर दिया तो उसका जो रिटर्न है वो दैट बिकम्स टैक्स फ्री.
2: वेरी नाइस.
1: तो चलिए
0: दूसरा क्या कि इसमें एक प्रोटेक्शन होता है. सॉरी मैं 2 मिनट और लूँगा प्रदीप जी, कि सुपर फंड का पैसा प्रोटेक्टेड होता है. आपका जैसे गॉड फॉरबिड कि अगर आप बैंकरप्सी में चले जाते हो तो SMSF
2: सुपर का कोई टच नहीं,
0: सुपर कोई टच नहीं कर सकता है. ठीक है. और एक और बड़ा प्रश्न आता है हमारे सामने कि यार सुपर में डाल दिया पैसे को हम छू नहीं सकते. ऐसा नहीं है. आप रिटायरमेंट के पहले भी ले सकते हो. उसके कई कारण होते हैं जो आपको फुलफिल करना होगा. एक है कि फाइनेंशियल हार्डशिप होती है,
2: आप उसमें ले सकते,
0: तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए ETO को और वो आपको रिलीज कर देते हैं पैसा. दूसरा है कि आपको मान लो एक्यूट कोई प्रॉब्लम आ जाती है एकदम सडन, वो उसमें भी पैसा रिलीज हो जाता है. आपका जैसे घर का इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे जिसके यू मार्ट लूज योर होम, उसके लिए पैसा रिलीज हो.
2: तो मतलब इमरजेंसी में
1: हार्डशिप बेसिकली हार्डशिप
0: क्या ना कि मैंने देखा काफी लोगों को एक अजीब किस्म की परसेप्शन बनाया हुआ
1: कि सुपर का पैसा हमारा नहीं है.
0: हाँ, सुपर का ये आपने बहुत अच्छी बात बोली. कुछ लोग कहे सुपर में वो तो हमारा कब कहाँ कब किसने देखा, वो आपका पैसा है भाई. ठीक है. तो ये जानकारी आशा है कि श्रोताओं को पसंद आएगी.
1: चलिए यतीन जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और चूंकि ये जानकारी काफ़ी तकनीकी हो जाती है तो हम यहाँ पर एक सुझाव भी देना चाहते हैं कि अपना हमारी जानकारी जो है सिर्फ जानकारी काफ़ी तकनीकी हो जाती है तो हम यहाँ पर एक सुझाव भी देना चाहते हैं कि अपना हमारी जानकारी जो है सिर्फ एक साधारण

0: आएंगे और उसके बाद किशोर कुमार का एक गाना सुनते हैं, उसके बाद में श्रोताओं की प्रतिक्रिया और फाइनेंस की रिपोर्ट सुनाते हैं।
1: क्या आपको मालूम है कि 1976 में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के सारे गाने बैन कर दिए गए? हुआ ये कि संजय गांधी चाहते थे कि प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के समर्थन में गीतों भरी एक शाम हो जिसमें किशोर कुमार भाग ले। किशोर कुमार के पास एक फोन आया। आमतौर से किशोर कुमार फोन उठाते नहीं थे, लेकिन उस दिन उन्होंने फोन उठा लिया। फोन में कहा गया कि आपको दिल्ली आना है, संजय गांधी का कार्यक्रम है। किशोर कुमार ने पूछा आपकी तारीफ, उन्होंने कहा बर्नी। बर्नी उस जमाने में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में सचिव हुआ करते थे। किशोर कुमार हालांकि अपनी तुनक मजादी के लिए मशहूर थे, लेकिन उस दिन अनयूजुअली बहुत काम थे। उन्होंने कहा कि आइंदा से जब आप फोन करें तो मेरे सचिव से बात करें और मुझसे पहले टाइम ले लें और फिर फोन करें। बर्नी ने यह बात अपने बॉस विद्याचरण शुक्ल को बताई, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि फिल्म प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जाए जिसमें नासिर हुसैन, जीपी सिप्पी और बीआर चोपड़ा शामिल हुए। जीपी सिप्पी ने किशोर कुमार को समझाने की कोशिश की, लेकिन किशोर कुमार नहीं माने। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी सीबी जैन हुआ करते थे, उन्होंने किशोर कुमार को फोन किया, लेकिन किशोर कुमार ने उन्हें भी स्नब कर दिया। बर्नी ने 11 मई 1976 को आदेश निकाला कि अब से दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार का एक भी गाना नहीं बजेगा। इसके अलावा पॉलीडोर और एचएमवी से भी कहा गया कि उनके रिकॉर्डों की बिक्री रोक दी जाए। और किशोर कुमार ने जिन फिल्मों में प्लेबैक दिया था उन फिल्मों को भी दूरदर्शन पर दिखाने से मना कर दिया गया। आखिरकार एक महीने बाद 14 जून को किशोर कुमार को मजबूर होकर कहना पड़ा कि वो सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और इस तरह से किशोर कुमार के गानों पर लगा बैन हटाया गया।

श्रोताओं, आशा करते हैं आपको किशोर कुमार की ये इमरजेंसी के दौर की कहानी पसंद आई होगी। सुना तो हमने भी इसके बारे में था, लेकिन आज इसकी विस्तृत जानकारी मिली कि कैसे कैसे हुआ और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो चलिए, हमेशा की तरह पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी हम ऑन एयर पढ़ते हैं। तो हमारे काफ़ी श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं, कुछ लोगों की अलग से आई हैं, कुछ लोगों की हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आई हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप वाली मैं पढ़ता हूं। तो लीला तिवारी जी कहती हैं, समाचारों के प्रेरक विचार से रेडियो दर्पण का अत्यंत खूबसूरत शुभारम्भ, खूबसूरत मधुर भजन मधु घोल रहा है। हमारे राजीव गुप्ता जी कहते हैं,

0: सुन लीजिए, आज के विनर का हम नाम बता दें तो बंटवारा फिल्म का जो पास मिलेगा लीला तिवानी जी को मिलेगा, और हनुमान अंश का शिखा चड्ढा जी को मिलेगा एक टिकट, और सुहाने सफर के जो पांच विनर रहे हैं उनमें चेतन शाह जी हैं, सुहास रानी जी हैं, राजीव गुप्ता, राम दुबे जी और हेमलता जी। हम आपको संपर्क करेंगे कि आपको टिकट या पास कैसे मिलेंगे। उपाध्याय जी, जाने का समय हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोताओ आपका दिन अच्छा रहे, और अभी रुके रहिए प्रोग्राम पे, मराठी भाषा का अच्छा प्रोग्राम शुरू होने वाला है।
1: और बिल्कुल, हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, और रक्षाबंधन इस सप्ताह है, और एक रक्षाबंधन का सुंदर सा गीत आपके लिए छोड़े जा रहे हैं।